0: राजिंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि अशोक बरने के सर्वा बरने
1: जगदंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय।

0: सर्वतर देसै के सर्वतर पेशै के सर्वतर राजै के सर्वतर साजै
1: के सर्वतर दीनै के सर्वतर लीनै के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो
0: के सर्वतर देसै के सर्वतर पेशै के सर्वतर कालै के सर्वतर पालै
1: के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी
0: के सर्वतर काजै के सर्वतर राजै के सर्वतर सुखै के सर्वतर पोखै
1: के सर्वत्र उत्तराण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र मानिय सदैव प्रधानिय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र स्थापिय
1: के सर्वत्र पन्न के सर्वत्र मन के सर्वत्र इंद्र के

0: समस्तो सलाम है सदैव काम इंद्र बाद स्वरूप है अगाध है अनूप है
1: ओंगाद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: त्रभंग त्रभादे गंजे गादे सुभंग सुरभागे सो सर्वानुरागे
1: भुक्त स्वरूप है छिज है छूत है के नरकंड पर नास है पृथ्वी और प्रवास है
0: निरुक्त प्रभा सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है

0: सर्वंगता सर्वंगता सर्वंख्याता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणंग सर्वंगत्राणंग
0: सर्वंगकर्मंग सर्वंगधर्मंग सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता
1: सावल शांतवाय प्रसाद
0: नमो नर्कनाशेषदैवं प्रकाशेनंगं स्वरूपे अभंगं बभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाध बभूते
0: अनंगी नामेत्रभंगी दीर्घामेत्रभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न
0: पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते
1: भगवती शांत व प्रसाद
0: रजूर है क्या आज रजूर है मे सो सलाम है समस्तुल कलाम है
1: साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है
0: के रोजी दहन है के राज करहिंद है करीमल कमाल है उसनल जमाल है
1: करीमल खिराज है करीबल निवास है हरीफल शिकान है रासल फिकान है
0: लंकंग पनास है समस्तुल निवास है गंज लग्नि में रजाय करहीम है
1: समस्तुल जुबान है के साहिब किरा है के नरकंग पनास है बेस्तुल निवास है
0: सर्वगवान है में सर्वान है तमाम तमीजा समस्तुल अजीज

अनुपवना सुमन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल तल मदाम जल थल मंड दस विच भंड जल थल महान।

0: विश्वंभर है, करुणालय है, नृपनायक है, सरपायक है,
1: पंजन है, अरगंजन है, रिप्रतापन है, जप जापन है,
0: अकलंकृत है, सर्वाज्ञ है, कर्ताकार है, अर्ताहर है,
1: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बसे जस के जस है, पृचंग पर्याद शंद।
0: नमो सूर सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो

0: ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह तप प्रसाद स्वये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिद्धांत के लेख फिर कर जोग जति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखिये तो प्राण पति के
1: भगवान की पाई कृपा होते एक रती के।
0: माते मतंग जरे जर संग अनुपतंग सुरंग सवारे
1: रंग को रंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे
0: पारी पुजान के भूपली बिदने आवत शीस न जात बिचारे
1: पाए
0: पधारे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
1: सुंदर
0: है भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: भगवान पजे बिन अंत को अंत के दाम से धारे
0: एक नान दया दम दान सुसंजम ने मन एक बसिख है
1: जमीन
0: जमान आहार जति जतार सब सो विचार हजार के देखा
1: भगवान पर जय बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख
0: है सुपाल ग्रंथ दुबास सुशासन अंदर जान द लेंगे
1: मान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे
0: और रीन मोर मुआसन माथे मतंगन मान मलेंगे
1: भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बड़े आर बिचारे सार की धार पशैया गाड़े गड़ान को तोड़ नार सो बात नहीं जग चार लवैया
1: श्री सबको सिर नायक जाचक नेक सो एक देवैया
0: दानव देव निंद्र सच रभूत बेख भवान जपेंगे
1: पल ही पल में सब था
0: पेंगे पन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के

0: सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारिए
1: पाद मुझे उभरे मरण काल का त्रास सुनवरे
0: जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करे।

0: शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे
1: जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।
0: यो कल को एक बार त्याए है ताके काल निकने आए है।
1: अच्छा हुए ताही सब काला दुष्ट रिष्ट करे तत्काला।

मिलेंगे बचे चरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो सरदा कर सेम गुरु।

रक्षया करे गुरु काल की तार, सो हमारी रक्षया करे गुरु काल की तार जगदीश।

संगत जी, सचे पातशाही ने कृपा कीती है, अपनी पवित्र गोदा आनंद अमृत वेले तो बख्श रहे ने। महाराज धन्यवाद है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सचे पातशाह जियां दा। प्यारियो, जो सचे पातशाह ने अज दा हुक्म बख्शिश कीता है, राग तनासरी दे विच भगत कबीर जी दी बाणी, सचे पातशाह कृपा करदे ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अकाल पुरख एक है, सतगुरु की कृपा दे नाल मिलदा है। सचे पातशाह अगे बख्शिश करदे ने, सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मरम ना जाना। कहिंदे ब्रह्मा दे पुत्र सनक सनंद ते शिवजी वर्गियां भी तेरा अंत नहीं पाया, भेद नहीं पाया। विष्णु शेर जिहड़ा विष्णु दा भगत है शेषनाग, कहिंदे उन्हें भी तेरा दिल दा राज नहीं समझा। जदों सच्चे पातशाह चंडी दी वार दा पाठ उच्चारण करदे ने ना, सब तो पहला जिहड़ा आपां पढ़दे हां प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, इह शब्द दी रचना करके सच्चे पातशाह अगे पढ़ कृपा करदे ने। कहिंदे खंडा प्रथमै साज कै जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा बिशन महेश साज कुदरती दा खेल रचाया, रचाए बनाया सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया। तैही दुर्गा साज कै दैंता दा नास कराया, तैथों ही बलराम लै नल बाणा तै सिरकाया, तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकड़ गिराया। बड़े बड़े मुण देवते कई युग तिन्नी तन ताया, किन्नी तेरा अंत ना पाया। सचे पातशाह कहिंदे कहिंदे कईयां ने कई कई युग तपस्या कीती है, पर तू बेअंत है, तेरा भेद नहीं पा सके। इस तरह कबीर साहब जी इस शब्द दे विच सानू सारयां नू हुक्म फरमान करदे ने। कहिंदे सेख नाग तक ने भी जिहड़े बिल्कुल विष्णु जी दे नाल रहिंदे सी, उन्हां भी तेरा भेद नहीं जानिया। संत संगत राम हृदय बसाई, कहिंदे जदों संतां दी संगत दे विच जाईए ते फिर वाहिगुरू दा सिमरन जिहड़ा आ उहनूं हिरदे दे विच धारना करो। रहाओ हनुमान सरगरड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना। कहिंदे श्री रामचंद्र जी दा सेवक हनुमान वर्गे जिहड़े विष्णु दे सेवक दे पंछी गरड़ वर्गे, देवत्यां दे राजे इंद्र दे वड्डे वड्डे राजिआं ने भी तेरा अंत नहीं पाया। तेरे गुणा की बेअंतता इन्नी है कि कोई भेद नहीं पा स

संतर पवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरै काची पिंडी शब्द न चीने उधर पर है जैसे ढोर है। बाबा ऐसी रवत रवै सन्यासी गुर कै शब्द एक ले उबलागी तेरा नाम रतै तृप्तासी रहाओ। कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेक पे

बाबा मूर्ख हां ना मैं बल जाऊं तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराऊं रहाऊं।

जग चतुर सियाणा परम पुलाणा नाउ पंडित पढ़े गवारी नाउ विसारे बेस माले बिकूले लेखारी कलर खेती तरवर कंठे बागा तहर कज्जल चरै ए संसार सह की कोठी जो पैसे सो गर्भ जरै रईत राजे कां सुबाए दो अंतर सो जासी कैत नानक गुर सचे की पौड़ी रैसी अलख निवासी मारू महला तीजा घर पंजवां अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिसनो प्रेम मन वसाए सचै साहिब शब्द सह सुभाए एहा वेदन सोई जाने अवर

सिद्ध साधक देव मुन जन वेद करै उचारो सिमर स्वामी सुख सहज पुंचै नाही अंत पारावार अनक शत प्राशत मिटै खिन मैरदै जप भगवान भावना ते मां पावन कूड़दान इशनान बल बुद्ध सुध प्राण सरबस संतना की रास बिसरना ही निमक मन ते नानकी अरदास मारू महला पंजमा शास्त्र तीखन काट डार्यो मन्ना की जो रो किनो रोस काज उआ को लै सवार्यो तिल ना दिजो दिनो दोष

लागना लागण नीका गुरचरनी मन लागना ए बित सह प्राप ते जा कै मस्तक भागना कहो नानक ते सब किश नीका जो प्रभ की शरण आगना मारू महला पंजवा। आओ जी तू आओ हमारे हर जस सरवण सुनावना रहाओ तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संगावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध प्रगा सह दुरमत दूख तजावना दर्शन पेट दूध पुनीता पुनरप गर्भ न पावना नौ निद सिद्ध पाई जो तुमरै मन भावना।

पाणी पित जाता उदर संज उर्द संजोगी धरती माता रैन दिन सुदोदाई दाया जा खेला खेलाई है आपे मछली आपे जल आपे गऊ आपे रखवाला सर्व जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रफुरमाई है आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी आपे वे बाणी निरंकारी निरपो ताड़ी लाई है खानी बाणी तुझे सुमानी जो दिसे सव्यावन जानी सेई सा सचे व्यापारी सतगुरु बूझ बुझाई है शब्द बुझाए सतगुरु पूरा सर्व कला साचे परपूरा अपने विप्रवा सदा तो नाते तिल नतमाई है काल विकाल पय देवान शब्द सहज रस अंतर मन है आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन भाई है आप निरालम गुरु गम ज्ञाना ज्योति सह तुज माए समाना नानक नीच विख्या दर जाचे मैं दीजे नाम वडाई है मारू महला पहला आपे धरती तौले आकाशंग आपे साचे गुण प्रगासंग जति

पहला हाथ झुका दिए परे पारे आनरंजन कसम हमारे साचे जोग जुगत विचारी साचे ताड़ी लाई है के तड़िया जुगत अंधुकारे ताड़ी लाई सिरजनहारे सच नाम सच्ची वड़ियाई साचे तख्त वड़ाई है सतजुग सत संतोख शरीरा सत सरवरते गैर गंभीरा सच्चा साहब सच परखे साचे हुक्म चलाई है सत संतोखी सतगुरु पूरा गुरु का शब्द मने सो सूरा साची दरगह साच निवासा माने हुक्म रजाई है सतजुग सच कह सब कोय सच वरत सच सोय मान मुख सच परम पो भंजन गुरमुख सच सखाई है त्रते धर्म कला एक चोके तीन चरण एक दुबदा सोके गुरमुख वै सो सच वखाने मान मुख बचे अवाई है मन कदे न दरगह सीजे बिन शब्द के अंतर भीजरीजे बादे आवे बादे जावे सोजी बूझ न काई है दया दुआ पर अधि होए गुरमुख विरला चीने कोय दोए पांग तार

दान कराए। राम नाम बिन मुक्त न होई, थाके कर्म कमाई है। कर्म धर्म कर मुक्त मंगाई, मुक्त पदार शब्द सलाए। बिन गुरु शब्दे मुक्त न होई, पर पंच कर परमाई है। माया ममता छोड़ी न जाई, से सुचै संस्कार कमाए। ऐनस भगत करे बेचारी, ठाकुर शोभन आई है। एक जप तप कर कर तीर्थ नावै, एक तुद पावै तिवै चलावै। हठ निग्रह कहे ते तिसन, हठ निग्रह अवतीज न भीजे। बिन हर गुर किन पद पाई, कली काल मै कल राखी। बिन गुरु पूरे किने न पाखी, मन मुकूड़ वरते वरतार। बिन सतगुरु परम न जाई, सतगुरु वे परवा सरंदा। ना जमकार न छंदा बंदा, जो तिस वैसो अविनाशी। ना तिस काल संताई है।

पहले साचे मिले शब्द मिलाए जाति पाना सह सुमाए त्रिपुण जो तरी परमेश्वर अवरण दूजा भाई है जिसके

0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जपत परे न पंग
0: हर का नाम जन की बड़ियाई
1: हर के नाम जन सुभा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग
1: हर नाम जप कोई नहीं वियोग
0: जन राता हर नाम की सेवा
1: नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन के माल खजीना
1: हर तन जन को अप्रभ दीना
0: हर हर जन के ओट सतानी
1: हर प्रताप जन अपर न जाने
0: ओत पोत जन हर असराते
1: सुन समाज नाम रसमते
0: आठ पहर जन हर हर जपे
1: हर का भगत परक नहीं छपे
0: हर की भगत मुक्त भो करे
1: नानक जन संग कित

0: ज्ञान मार्ग संयम असाधन
1: निमक निमक कर सिर कटावे
0: तबे हमें मेल न जावे
1: हर के नाम समसर कशना
0: नाम गुरमुख नाम जगत कत पावे
1: मन कामना तीर्थ दे छुटे
0: गर्भ मान न मन

0: देह अनी
1: सुध कहा हुए काचे पितल
0: हर के नाम की महिमा ऊंच
1: नानक नाम ग्रह पतत बहुच
0: बहुत स्यान पजम का पौ व्यापे
1: अनक जतन का त्रिश न द्रापे
0: पेख अनेक अगन ने बुझे
1: कोट पाव दर के ने सिजे
0: छूट स्नाही उब पया
1: वोहे व्यापे माया जा
0: अवर कर तू सगली जंडाने
1: गोविंद पजवे तन मन।

0: घर प्रेत पसम संग होए
1: अंध कूप में पत बिकराल
0: नानक कर लियो प्रभु दयाल
1: करतूत पशु की मानस जात
0: लोक प्यारा करे दिन रात
1: बाहर पे अंतर मल माया
0: छाप छना कुछ करे

0: यह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
1: यह
0: प्रसाद सुगंध तन लाभ है यह प्रसाद बसै सुख मंदिर यह प्रसाद गृह संग सुख बसना यह प्रसाद रंग रस भोग यह प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है यह प्रसाद सुख सेज सोई जय
1: मन आठ पै ताका जस गवीजे
0: यह प्रसाद तुझ सब को माने
1: मुख ताको जस रसन बकाने
0: यह प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दरगे मान पाव है
1: नानक पासे ते कर जावे
0: यह प्रसाद आरो कंचन दे
1: लिव लावे तिस राम स्ने
0: यह प्रसाद तेरा ओला रहता
1: मन सुख पावे हर जस
0: कहे यह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके
1: मन सने पर ठाकर प्रभु ताके
0: यह प्रसाद तुझ को न पहुंचे
1: मन सास सास सिमर प्रभु चे
0: यह प्रसाद पाई दुर्लभ दे
1: नानक ताके भक्त करे
0: यह प्रसाद भूखन पहरी जय
1: यह
0: प्रसाद असब हस्त असवारी
1: यह
0: प्रसाद बाग मिलक तना
1: अपने मना
0: जिन तेरी मन बणत बनाई इसे त्याय जो एक अलख है
1: यहाँ नानक तेरी रखे
0: यह प्रसाद करे पुन बोदान यह प्रसाद तुम आचार व्यवहारी

0: साधु कै संग सब को लो धारे
1: साधु
0: कै संग सो तन पावे
1: सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साधु
0: कै संग पाप पलाये
1: साध
0: कै संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सब जनम
0: साध कै संग नहीं किश का
1: दर्शन भेटत होत निहाल
0: साध कै संग कलोकत हरे
1: साध के संग नर पर हरे
0: साध के संग इहां उहां सोहिला
1: साध संग बिछरत हर मेला
0: जो इच्छे सो ही फल पावे
1: साध के संग न मिल जावे
0: पार ब्रह्म साधृत बसे
1: नानक गुरे
0: साध के संग सुनो हर नाम
1: साध संग हर के गुण गावे
0: साध के संग न मन ते बिसरे
1: साध संसार पर निस्तरे
0: साध के संग लगे परम मीठा
1: साधु के संग कट कट डिठा
0: साध संग पे आज्ञाकारी
1: साध संग पे ही मरे

0: सगल कीरीना
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी की सब ऊपर मया
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म
0: ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म।

0: ब्रह्म ज्ञानी ले तात बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो फल
0: ब्रह्म ज्ञानी सो फल फल
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नान ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु।

0: सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण मुक्त विदाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सबल आकार।

0: मानो की टेक वृत्ति सब जान
1: को एक भगवान
0: जिसका दिया रह गाये तुम्हारा रखा एक को आप जिसका हुक्म भू सुख होए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए उत्तत मन में कर निरंकार निर्मल रसना।

अर्ह कर्म सर्व हर कथा बड़ भागी तेजन जग माहे राम नाम जो करे विचार मन तन मुख बोले हर मुखी एको एक एक पछान राम संग जिसका मन मान्या प्रसाद अपन आप सुजय साध संग हर हर जस कहत हम दिन कीर्तन केवल बख्यान एक ऊपर जिस जन की आशा सार मम की जिस मन भूख जिसको हर पम मन चितावे प्रभ अपना कृपा करे जैसा सा तैसा दृष्टाया सोदत सीजिया देखो तब सब किच मूल न किस जन्मे न किच मरे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आपे आप सगल मैं आप नासी ना ही किच खंड लख पेव पुर प्रताप जिन पाप दाता सो सोभावंत सबके सेवक सगल उदाहरण आपे मेल ले कृपाल उनकी सेवा सोई लागे नाम जपत पावे विश्राम जो विच करे सो प्रभ कै रंग सुभाए होवे सो होए सबका किया जन मीट लगाना जिस ते उपजे तिस माहे समाये

0: की चिंता जिस मन माहे
1: जिसे व्यथा कोई नाहे
0: मेरे मन मेरे सदा हर जाग
1: अपनासी प्रभा पे
0: आपन किया कछु ना होए
1: ये सब प्राणी लोके कोए
0: किस बिन नाही तेरा किच काम
1: नानक जप एक नाम
0: रूपवंत होए नाही मोह
1: प्रभु जो सकल सोए।

0: संतन कर पाया।
1: राधा विमान लेहो मन मोल,
0: राम नाम हृदय में तोल,
1: लाद केव संत है संग चाल,
0: तन
1: तन कह सब कोई,
0: यहोवा
1: पार बिरला व्यापार, चरण साध के तोय तोय पियो, साध की तूर करो स्नान, साध सेवा बड़ भागी पाई है, अनेक विघ्न ते साधु राख, कोट गही संत धर आया, मित को जीवालन हार, सबने दान जाकी दृष्टि माहे, सब की चिस्का हो करने जोग, रब जान सदा सदा दिन रहनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, जाके मन गुर की प्रतीत, बहुत बहुत सुनिया तो लोए, सच करनी सच ताकी रहत, साची दृष्ट साचा आकार, बार ब्रह्म जिन सच कर जाता,

0: राजयोग में जोगी त्याय त्याय पथ है सुख पाया जाकी लीला की मित न है पिता का जन्म के जान न पूत मत ज्ञान ध्यान दिन दे गुण में जाको परमाए ऊंच नीच तिसके स्थान नाना रूप नाना जाके रंग नाना विध किन्नो विस्तार नाना चलित करे खिन माहे नाना विध कर बंत बनाए सब कर तिसके सब तिसके ठाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
1: नाम के तारे सगल अवतार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन
1: नाम के समुद्रे सुन सरवण
0: कर कृपा जे सपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: वक्त सत केवल प्रधान
0: कतूत सत सत जाकी बाणी
1: सत पुरुषा माहि समाणी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: बोल सत सत उत्पत्त
0: सत करनी निर्मल निमली
1: जिसे भजाए से सब पले
0: सत नाम प्रभु का सुखदाई
1: विश्वास सत नाम गुरते पाए
0: सत वचन साधु उपदेश
1: सत जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत नित बूझा जे कोए
1: नाम जपता नहीं गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपने मित करत
0: जिसकी सृष्टि को करना है हार
1: अपना बोझ सत विचार
0: सत्य की मित न जाने किया
1: नानक जो दिस पावे सो बतिया
0: विस्मन विषम पाए विस्मार
1: जिन बुझिया तिस आया
0: सब के रंग राजन रहे कोई दाते दुख काटन हार
1: संतरे संसार
0: का सेवक सो बड़ भागी।

0: अष्टमी चरण सत सत परसन हार दर्शन सत सत पेखन हार आव सत सत सब धारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता दूजन हार को सत सब होए सत स्वरूप हृदय जन
1: मान्या
0: हृदय विश्वास प्रभाया निरपो हुए
1: बसाना
0: महले बस्त गडाई
1: पूजा
0: बूजन हार बवे
1: नारायण
0: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
1: ठाकुर
0: के सेवक के मन प्रति
1: ठाकुर के सेवक
0: ठाकुर को सेवक जान

0: हर का नाम ले
1: सत्य प्रदेश से तो दे
0: माया के संग न ले
1: मन रखे
0: अंधकार दीपक प्रगासे
1: अनंत परम तुत नसे
0: सब तवाहे ठाड बरताई
1: अंध प्यास कुनाटे वाई
0: जन्म मन के मिटे अंदेसे
1: साधु के पुराण प्रदेश
0: सो चुका निरपो होए बसे
1: सर्वयाद मन ते कहने से
0: इसका सातिन कृपा तारी
1: सानुचम नाम रवि
0: पित पाई चूके परम गवन
1: नानक हर जय सर्व
0: निर्गुण आप सर्वगुण पियो ही
1: तारजन सकले मोहि
0: आपने चरित्र आप बनाए
1: हिमता पे पाए
0: अरविंद दूजा नाही कोई
1: सर्व अंतर एक सोए
0: बोत बोत रव्या रूप

0: एक आस राखो मन माहे
1: सब रोग नानक मिट जाए
0: जिस तन को चार गुण टुटता गए नित बाछे मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: जिस सोभा को करे पली करनी
1: सा सोभा पजा के जानी
0: अनेक पावी रोग

0: ताति ठंडा हर नाव
1: सिमर सिमर सदा सुख
0: भाव विंचा पूर्ण होए आस सिद्ध कर जाए बसै अविनाशी
1: नानक काटे जम पासे
0: तत विचार कह जन साचा।

0: सब की दृष्ट महासुख होए
1: हरस पावे बिल्ला कोई
0: जिन चाख्या से जानते ताने
1: पूर्ण पोर प्रेम डोलने
0: सुप पर प्रे प्रेम रस रंग
1: ये साहु साध के संग
0: परे सरन आन सब त्याग
1: अंतर प्रकाश अंधेर विलाग
0: बड भागी जप्या प्रभ सोए
1: नानक नाम रते सुख होए
0: सेवक की मनसा पूरी पई
1: सतगुरु निर्मल मत लई
0: जान को प्रभ होयो दयाल
1: सेवक कीनो सदा निहाल
0: बंधन काट मुक्त जन पाया।

0: जब इसका वर्ण चिन्ह न जावत
1: तब हर शोक से व्याप्त
0: जब आपन आप आप पार ब्रह्म
1: तब वो कहां से होवत पार
0: आपन खेल आप वर्ती जा
1: नानक करने हाल बुझ
0: जब होवत प्राप्त केवल

एका टेक रखो मन माहे किस्ते दूर कहाँ को जाए निरपो जपे सगल पो मिटा पर राखे तिस नाही दुख चिंता जाए मिटा अहंकार रूप ठाडा गुरसूरा हाथ पूरी अमृत जाके दिष्ट चरण कमल जाके अनूप धन सेवा सेवक परवान जिस मन बसा सो होत निहार।

0: प्रसाद परम का नाश
1: मानव तन में हो
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना सुने सुब बचन जिन जाता तिसकिए रहत जो जो हुए सोई सुख माना अंतर बसे बार पियो ही
1: नानक दर्शन
0: आप सत किया सब सत पावे ता करे विस्तार कला लखी न जाए कवन निकट कवन कहिया दूर अंतर गाज आप जनाए सर्व भूत आप वर तारा सर्व समग्री जा का तना आवन जानिक खेल बनाया सब के मध्य लिप्तो रह आज्ञा आवे आज्ञा जाए इसते होए सुना ही बुरा आप लाक तू तत निकी आप साथ तारी सब साथ
1: अपने संग

0: आस अनित त्याग त्रंग
1: अंजना के तोड़ मन मांगे
0: आप छोड़ बेंती करो
1: अगन सागर करो
0: हरतन के पाल्यो पंडार
1: नानकर पूरे नमस्कार
0: केम कुशल सहज आनंद
1: परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गौण बैंत अमर रस पियो
0: चित चित हो नारायण
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: पंजन पूरन कृपा
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: उत्तम
0: सलोक साध के बचन
1: हम लोग
0: सुनत कमावत हो तो उदार
1: आप तरे लोक
0: सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द नाद बाजा
1: छोटे
0: गोपाल महंत के माथे
1: सरन
0: जोग सुन सन्नी आए मिट गए बैर पे सब रे
1: सब
0: प्रसन्न पे गुरुदेव
1: सेवा
0: जंजाल बिका तेरा ते
1: राम नाम सरस
0: प्रसाद दया प्रवतारी
1: नानक निवेहि के।

0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
1: जिसमन वसै सहत निदान
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए
1: प्रधान पुर पर सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: बोना होवे अब जाना
0: तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: हेम शांत रिद्ध नव निद
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध
0: विद्या तप जो प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेत उत्तम छनान
0: चार पदार्थ कमल प्रगाढ़
1: सते मस्त सते उदास
0: सुंदर चतुर तत का बेटा
1: समदासी एक दृष्टि।

सतनाम श्री वाहे गुरु साहब जी, पुता माता की आशीष, निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सतगुरु तुमको हुए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, सुकटल गुरु सेवियां, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, सज्जन सच्चा पातशाह